0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: एक्सप्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

तो भाई क्या तुम्हारी आंखें सावन की ऋतु हैं या बादल है? प्यारे कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। देखो यदि तुम्हें वर्षा की ऋतु का आनंद उठाना है तो साल में दो ही बार बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए और आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक सुगम उपाय बता रही हूं।

0: घर से दर्शन को नैननवा आया ओ साजनवा,
1: घर से दर्शन को नैननवा आ जाओ साजनवा,
0: घर से दर्शन को

आंखें सावन की ऋतु हैं या बादल हैं प्यारे, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। देखो, यदि तुम्हें वर्षा की ऋतु का आनंद उठाना है तो साल में दो ही बार बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए और आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक सुगम उपाय बता रहा हूं।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: शूटिंग मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: मैं और मेरी कमाई
1: प्यास क्यों नहीं बुझती
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
1: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है।
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: रचावेल चुच्चे पाकी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को

0: रसावेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा हुआ।

0: 43 7 से 36
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: अभी आपने सुना था नहीं रोवा लोग इनके अपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्याप ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज
3: अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झारी

शाम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,

0: FM AJ 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन दिँदै हुनुहुन्छ हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: ओल्ड प्यालेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

तुम्हारी आंखें सावन की ऋतु हैं या बादल हैं प्यारे, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। देखो, यदि तुम्हें वर्षा की ऋतु का आनंद उठाना है तो साल में दो ही बार बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए और आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक सुगम उपाय बता रही हूँ।

क्यों भाई, क्या तुम्हारी आंखें सावन की ऋतु हैं या बादल हैं? प्यारे, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। देखो, यदि तुम्हें वर्षा की ऋतु का आनंद उठाना है तो साल में दो ही बार बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए और आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक सुगम उपाय बता रही हूं।

0: घर से दर्शन को नैननवा आया ओ साजनवा,
1: घर से दर्शन को नैननवा आ जाओ साजनवा,
0: घर से दर्शन को

0: दर से दर्शन को नैननवा आया ओ साजनवा,
1: दर से दर्शन को नैननवा आ जाओ साजनवा,
0: दर से दर्शन को नैननवा आ जाओ साजनवा,
1: दर से दर्शन को नैननवा आ जाओ साजनवा।
0: छम छम छम छम छम छम
2: छम छम छम छम छम
0: छम छम छम छम छम छम
2: छम छम छम
0: छम।

हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन मारीच जो सुवर्ण का वर्ग बनकर के आया, माताजी ने आग्रह किया, राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देख रहा पीछे, क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लू उतना ही कल्याणकारी। बाण लगती हाँ लक्ष्मण कह दिया, माताजी ने उनको भी भेज दिया, रावण संत के रूप में आया, परम्बा का हरण कर लिया। दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है, दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा, तमिल भाषा में था। एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने, कहा कि माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने वहां तर्क प्रस्तुत किए। वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया, आकाश मार्ग से ले गया, तो उसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।

स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। पर यह शाप थोड़ी लगा था कि माता जी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण माता का ही भाव था जानकी के प्रति। तो कहते हैं फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया, फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वाटिका में, तब अनचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। चाहता था कि माता वास्तव में आपकी दृष्टि पड़ने से ही मेरा कल्याण होगा, इतनी स्त्रियों को मैंने यहां चुरा करके रखा हुआ है, ये और मैं हम सब पाप के भागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कृपा दृष्टि यदि मेरे और इनके ऊपर पड़ जावे तो हमारा और इनका सबका कल्याण हो सकता है। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार आप कृपा दृष्टि डाल दें, क्योंकि माता की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सारे दोष माफ, सौ खून माफ। जटायु को जब राम जी ने गले से लगाया और जटायु जी का दाह संस्कार किया, जबकि पक्षी का संस्कार ऐसा करना नियम विरुद्ध है, और भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया तो लिखा है कि जटायु हरि का रूप राम का रूप लेखन के वैकुंठ गया, हरि का रूप ले लिया, उसको मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न होता है कि जटायु को मुक्ति क्यों मिली, क्योंकि मुक्ति को पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो जटायु के पास में तो था ही नहीं। एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट पक्षी यदि कोई होता है तो वो गिद्ध होता है, सामस भोगी, सामस भोजी होता है वो। ये गिद्ध जो होता है मरे हुए पशुओं को खाता है, उस परिवार में जन्मे थे जटायु जी। फिर उसको मुक्ति क्यों मिली, बोले सत्संगी होंगे। जटायु ने अपने जीवन में किसी संत के पास बैठकर 2 मिनट सत्संग किया ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई, पर जटायु माला जपते होंगे 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम है, तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वो हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों, बोलो उसमें कोई सदगुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी, और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसी कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया, और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया, मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हां हां जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामी केजूरे, ना हम जानामी कुंडले, नूपुरे तभी जानामी नित्यम पादाभिबंधनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं इस आदमी के संग मित्रता मत करो। राम जी बोले क्यों, नहीं ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों, माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया।

अरे परिचय नहीं था, ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है, ठीक है। यदि यह वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता, तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख रहा है कि कोई राक्षस हरण करके रह जा रहा है, तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। ऐसे भीरू, ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा और माता की नजर, उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू का मात अवसर पाए, कबहू का अंब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्र का राम के चरणों पर पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं, मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा। फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया और सब लोग जानते हैं। लंका में श्री हनुमंतलाल पधारे और हनुमान जी महाराज, तीन विघ्न आए थे रास्ते में और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई, मुद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरी वह, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, राम के बिना घर में प्रकाश कैसा। 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते, हम पादुका कैसे पहने। 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल। यह वैचित्र है। हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं श्री भरतलाल ने देखा, आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कोई सूचना नहीं आई। भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले, नंदीग्राम से, सेनापति महामंत्री पीछे दौड़ रहे, महाराज सुनिए, महाराज सुनिए। बोले, मैं कुलंगार हूं, मेरी वजह से रघुवर को इतना क्लेश उठाना पड़ा और वो दौड़ते जा रहे। दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए, सैनिक रोक रहे, देखे रुके नहीं, उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ गए, धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। राम से कहा था 14 वर्ष एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे ही सरजू में छलांग लगाई, त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी देखा, तो दो महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा, कौन है आप लोग, मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा, हम तो राम की चरण पादुका हैं, चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है, जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे, हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी, अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा।
रूपशील और बलिय तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है। कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया। वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया। और भागवत में लिखा है 13,000 वर्षों तक राम जी रहे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, अपने ऋषियों का ही मंतव्य है कि 2000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे, उनके पुण्य कार्य को अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2000 वर्ष और निवास किया, और अवध वासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई, और कृष्ण कथा 115 अध्याय में बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण सतकोटि अपारा, हे भगवान हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती, रामचरित इतना महान इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते, बोले राम कथा सुनाऊं, मैंने सुनाओ, तो बाबा कहते एक राम अन्ना, एक राम एक राम अन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा 1 मिनट में, राम कथा। लेकिन राम कथा कहीं जीवन बीत जाए, राम कथा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा है विचित्र रामचरित्र। सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम, एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, एक बार वृंदावन ने भी कही थी मैंने राम कथा 9 दिन तक, बिल्कुल भागवत के क्रम से 6 घंटे रोज, बड़ा आनंद आता है। मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है, बड़ी आदर्श है। आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें। जल्दी गोकुल चलना है बेचारे, 2 बजे से ही पहने सज धज करके लोग बैठे हैं। हाँ तो कन्हैया के पास चलना है जन्म। अच्छा सुनिए, किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को, तो नहीं कहते तो भी चलता। बोले नहीं, कहना जरूरी था। याज्ञवल्क मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क जी ने उनको शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा कही। तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक राम चरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक राम चरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा, तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए राम कथा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है, बड़ा विचित्र चरित्र है। कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो, राम की मर्यादा की दूरबीन आंखों पर लगाओ, फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं आना है, इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र। तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर लें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए 2 मिनट मन को शांत बनाएं। कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं।

भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं,

राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं। जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे, बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे,

मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं। जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे, बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे, उसमें जजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं, उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा।

0: निष्ठा वर्ष परमणि।
1: यदु और तुर्वसु ये दो पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु अनुपुरु तीन हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने, शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और जजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर हजार वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानी हो रही है, पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को स्मारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया राजा जजाति। कहते हैं, माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधु के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती। बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति वन को चले गए, और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे, और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे। थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था, वो जल पान करने बैठे, एक चंडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा ये भी प्यासे। रंतदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े, और आकाश की ओर देखकर के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो और यदि सबकी वार्ताएं तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना, मुझे वैकुंठ का पद नहीं।

मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए। एक ही बर देना, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने दुखी जीव हैं, उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं, यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चलकर के पांचाल वंश, कौरव वंश, ये कई शाखाएं, शाखा पर शाखा निकलती चली गई, लेकिन जजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीज, और देवमीज महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन, और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में बास करते हैं, नवनंद नंद बाबा आदि।